0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা
1: 107 FM রেইনবোতে, নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पाविया हाजिर हो गई हूँ ठीक 10:03 पर लेकर
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉन स्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ, एफएम रेनबो पर। आशा है कि आपका दिन बड़ा ही अच्छा जा रहा हो और बाहर हल्के बादल छाए हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसी बात पर मौसम का हाल चाल। आज भी मौसम, जो हमारी मौसम विभाग है, वो बता रही है कि आज भी हल्के बादल छाए रहेंगे, हल्के के ही अच्छे खासे बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ बारिश होने की गुंजाइश भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की गुंजाइश है। पिछले 24 घंटों में कोलकाता में करीब 20.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई और अधिकतम तापमान दर्ज की गई 29 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था, और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। अब मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी बताई गई है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा तट के समुद्री क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे

की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और झोंकों की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल मौसम का अपडेट इतना ही। सुरक्षित रहें, मौसम की जानकारी सुनते रहें और दिन की शुरुआत करें मुस्कान से। जी हाँ, क्योंकि नॉनस्टॉप गपशप आ चुका है और साथ ही साथ मैं पापिया हूँ आपके लिए, आपके पास, आपकी यहाँ, आपकी बातें सुनने के लिए। फिलहाल के लिए चलिए कार्यक्रम की शुरुआत तो हो गई है, तो गाना भी सुन लिया जाए।

0: ये इस प्यारे से गाने के बाद चलिए चलते हैं सीधे कोलकाता कल्चर की ओर, जान लेते हैं हमारे आसपास कौन सी घटनाएं घटी।
1: कोलकाता कल्चर।
0: तो दोस्तों, कल हमारे राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री ने भवानीपुर स्थित एक संस्थान में एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद का जीवन पश्चिम बंगाल के गठन में उनकी भूमिका और उनके राष्ट्रवादी विचारधारा को अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्य के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए विधानसभा निधि से 25 लाख रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री भवानीपुर स्थित इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में शामिल हुए और स्कूल प्रशासन को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा, मुझे इस शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर गर्व हो रहा है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति से जुड़ा हुआ है। समारोह के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक वर्ष से पश्चिम बंगाल की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में पश्चिम बंगाल के निर्माण में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका, देशभक्ति, एकीकृत भारत का विचार, विधानसभा में उनके भाषण, स्वतंत्रता के बाद के भारत में उद्योग मंत्री के रूप में उनका योगदान और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास में उनकी भूमिका को भी शामिल किया जाएगा। तो देखते हैं कि

0: आगे क्या होता है कि पाठ्यक्रम के लिए ये जो है परमिशन कब तक मिलता है, तो लेट्स सी। फिलहाल के लिए कोलकाता कल्चर आज बस यही तक।
1: कोलकाता कल्चर।

0: चलते हैं अब एक चुटकी नुस्खे की ओर।
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक चुटकी नुस्खे में। यहाँ हम ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं जो जिंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा और स्मार्ट बना देती है। चलिए आज का नुस्खा बताते हैं जो कि है बहुत ही आसान। आज हम किसी पुराने कप या दूसरी चीज की नहीं, बस एक खाली कांच की बोतल की बात करेंगे। अगर आपके घर में कोई पुराने कांच की बोतल पड़ी है तो उसे फेंकिए मत। आज उससे हम एक सुंदर सा दिया या सजावटी लैंप बना सकते हैं। जी हाँ, आज बातें होंगी DIY की। सबसे पहले बोतल को अच्छे से धोकर सुखा लीजिए, फिर उसके अंदर छोटी LED लाइट या दिया रखने की व्यवस्था कर लीजिए। अगर चाहे तो बोतल के बाहर जूट की रस्सी, रंगीन धागा या पेन से सजावट भी कर सकते हैं। दिवाली, पूजा या घर के किसी कोने को थोड़ा सा रोशन करने के लिए ये बहुत बढ़िया आइडिया है। कम खर्च में एक अलग ही चमक मिल जाती है। अगर बोतल पारदर्शी है तो उसमें रोशनी और भी खूबसूरत लगेगी, और अगर बोतल रंगीन है तो उसका अपना ही अलग अंदाज बन जाएगा। बस एक बात याद रखिए, अगर बोतल के किनारे टूटे हो या उसमें दरार हो तो उसे इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हमेशा साफ और सुरक्षित बोतल ही लें। तो दोस्तों, आज का एक चुटकी नुस्खा यही है, पुराने कांच की बोतल को फेंकने के बजाय उसे एक सुंदर दिए में बदल दीजिए। फिलहाल एक और ट्रिक है भाई, पुरानी टी शर्ट और शॉपिंग से शॉपिंग बैग बनाने की, उसके बारे में बात जरूर करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कौन सी पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल किया है फिर से, यू नो, सस्टेनेबल लिविंग के लिए वापस से यूज़ किया है या फिर होती है आपके घर पे पुरानी चीज़ों की यूज़। तो फटाफट फ़ोन कीजिए, हमें बताइए, साथ ही साथ मौसम का हाल चाल भी बताइए, कैसा जा रहा है आपका दिन, आपके दिल की बातें करेंगे। साथ ही साथ एक चुटकी नुस्खे भी सुनेंगे कि अगले सेक्शन में भी जाएंगे अगली चुटकी एक चुटकी नुस्खे की। और अभी फिलहाल के लिए सुनेंगे गाना, है जवानी तो इश्क होना है।

0: हमें फिलहाल मिल गए हमारे पहले कॉलर, देखते हैं कौन है फोन लाइन पर। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉनस्टॉप गपशप में।
1: थैंक यू दीदी, आपने जो टॉपिक दिया है वो बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, क्योंकि हम लोग पुराना जीनी

0: जो है ना सामान जो है
1: जी
0: हम जिससे हम लोग रिस्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बोलूंगा वो मैं वॉच के बारे में जो बोलूंगा, हाँ वो पुराना जो घड़ी है हाथ का जो हैंड वॉच है ना वो मैं यूज कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि मेरा स्मार्ट वॉच जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसलिए पुराना वॉच में फिर से रिसेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। थोड़ा सा वो बैटरी में चेंज किया था, उसके बाद मैं फिर से रिवर्स कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पुराना जिनिस फिर से जब यूज करता हूँ ना पुराना सीटी भी मेमोरी भी अच्छा सा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो वॉच जो है मेरा डैडी ने दिया था, मेरे पापा ने दिया था, हाँ वो उस इस टाइम में तो मेरा डैडी नहीं है, क्योंकि उस टाइम में दिया था तो बहुत मैं उस टाइम में मैं स्कूल में पढ़ रहा था, टाइम में उसको दिया था और वो मैं फिर से यूज कर रहा हूँ जब मैं काजबाज में जॉब में जा रहा हूँ तो उस टाइम में फिर से यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा दिया है। और आपको मेनी मेनी थैंक्स, क्योंकि ऐसे टॉपिक दिया तो मैं हम लोग नॉस्टैल्जिया में भी रिचार्ज देने गया हूँ।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छी अच्छी बात है कि शोभिक ऐसे भी कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, तो पुरानी चीजें देखना आसानी से खराब होती भी नहीं है, क्यों है ना?
0: एकदम दीदी, वो बोलता है आप जो बोला है ओल्ड इज गोल्ड, ठीक ही बात किया है आपने, क्योंकि हम लोग जब भी कोई हाथ में जो देखते है जो कुछ नहीं है नहीं है, तब भी ये जो पुराना जो सामान है ना, जब जो कोई भी हो पुराना जो सामान है ना वही काम आता है
1: जी,
0: इसलिए हम लोग बोलते हैं जो ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की तरह हम लोग का काम देता है दीदी।
1: चलिए ठीक है शोभी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बताइए।
0: दीदी आज तो हम लोग का जो एमएस धोनी का आज बर्थडे है।
1: जी जी बातें होंगी उस बारे में भी।
0: हाँ दीदी, और उस जो सिनेमा जो था एमएस धोनी का जो सिनेमा था मूवी जो था उस मूवी से जो कोई गाना आप सुना दीजिए।
1: ओके ठीक है, चलिए सुन लेते हैं। ठीक है,
0: थैंक यू दीदी,
1: थैंक यू सो मच, बाय बाय,
0: थैंक्स, बाय बाय।
1: तो ये थे शोभिक, और शोभिक को ये कहना चाहूंगी कि हैव अ गुड डे शोभिक, होपफुली कि आज आपका दिन बहुत अच्छा बीते। तो चलिए फिलहाल उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एमएस धोनी फिल्म से अनटोल्ड स्टोरी से एक गाना सुनने का, तो सुन लेते हैं अरमान मलिक की आवाज में ये रोमांटिक ट्रैक।

0: आगे हैं हमारे दूसरे कॉलर भी, चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नॉनस्टॉप गपशप में।
1: मॉर्निंग प्रिया जी,
0: कैसे हैं?
1: अच्छा है, और आपका प्रोग्राम सुनकर और भी अच्छा हो गया।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा ट्रॉफिक लाने के लिए, क्योंकि हमारे घर का जो सामान है वो हमारे बहुत कीमती सामान है, उसको छोड़ने का मन नहीं चाहता है, लेकिन छोड़ना पड़ता है
0: जी।
1: तब भी कुछ कुछ सामान हमारा हमारे दिल में बस जाता है, इसीलिए मैं वो एक्सपायरी के बाद भी यूज करता है।
0: अच्छा।
1: जैसा कि हमारे जो घर का सीनारी का कैलेंडर है वो एक्सपायरी के बाद डेट, और हमारे बच्चों का जो किताब है उसका ऊपर मलट बनाकर सुदृश्य मलट करता है, जिसके वो बोई किताब नहीं खराब हो जाए, नष्ट ना हो जाए, इसलिए वो पुराना जो कैलेंडर को देकर उसका
0: बुक कवर बन जाता है,
1: मलट कर जाएगा, बुक कवर बन जाता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, और आपको पास है तो सिंग इज किंग फिल्म से तेरियो गाना प्लीज बना सुना
0: दीजिए। ओके, चलिए सुनते हैं। थैंक यू मोनिरुद्दीन दा, थैंक यू। तो ये थे मोनिरुद्दीन लश्कर दक्षिण साकराइल से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो पुराने कैलेंडर को फिर से यूज करते हैं अपनी लाइफ में। फिलहाल जो मैं बताने वाली थी, जो वादा किया था कि पुरानी टी शर्ट से शॉपिंग बैग कैसे बनाया जाए। आपके अलमारी में कोई भी ऐसी टी शर्ट तो जरूर रखी होगी जिसे आप पहनते तो नहीं लेकिन फेंकते भी नहीं। कभी उसका रंग हल्का पड़ गया, कभी उसका फैशन पुराना हो गया, या फिर किसी छोटी सी वजह से वो अलमारी के कोने में जाकर रह गई, और हर बार अलमारी साफ करते हुए हम यही सोचते हैं अरे इसे अभी रहने देते हैं, कभी काम आ जाएगी। तो दोस्तों आज वही कभी आ गया है। आज एक चुटकी नुस्खे में पुरानी टी शर्ट से एक शानदार शॉपिंग बैग बनाइए। सुनने में आसान लग रहा है ना, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक DIY आइडिया नहीं, ये पर्यावरण की चिंता भी है, पैसों की बचत भी, और अपनी रचनात्मकता को उड़ान देने का एक सुंदर तरीका भी। जरा सोचिए, जब भी आप बाजार जाते हैं दुकानदार पूछता है ना कि बैग चाहिए, और उसके साथ जुड़ जाता है एक और प्लास्टिक बैग। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, हम जाने अनजाने कितने प्लास्टिक बैग घर ले आते हैं। कुछ दोबारा इस्तेमाल होते हैं लेकिन ज्यादातर कूड़े का हिस्सा बन जाता है। अगर हर घर में सिर्फ एक पुरानी टी शर्ट से बना शॉपिंग बैग इस्तेमाल होने लगे तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना कम हो सकता है, जरा इसकी कल्पना कीजिए। तो आप सोच रहे होंगे लेकिन बैग बनाना तो मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं, अगर आपके पास एक पुरानी कॉटन टी शर्ट है, एक कैंची है, तो आधा काम वही हो जाता है। सबसे पहले टी शर्ट को एक प्लेन जगह, एक समतल जगह पर रखिए, उसकी दोनों बाजुओं को सावधानी से काट दीजिए, फिर गले के हिस्से को थोड़ा बड़ा गोल आकार दे दीजिए, यही आपके बैग का हैंडल बन जाएगा। अब नीचे के हिस्से को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट कर एक एक करके गांठ लगा दीजिए, और बस बिना सिलाई के आपका मजबूत शॉपिंग बैग बिल्कुल तैयार। सोचिए, जिस टी शर्ट को आपने बेकार समझ लिया वही अब हर हफ्ते सब्जी, किराना या किताबें लाने में आपका साथी बन सकता है, और सबसे अच्छी बात, ये बैग धोया भी जा सकता है, बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और अगर टी शर्ट अच्छी क्वालिटी की है तो सालों साल तक निभा भी जाएगा ये। तो दोस्तों, DIY का असली मजा तभी है जब पूरा परिवार उसमें शामिल हो। छुट्टी वाले दिनों में बच्चों को भी साथ बिठाइए, उन्हें सिखाइए कि हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती, कभी कभी थोड़ी सी कल्पना उसे बिल्कुल नया जीवन देती है। यकीन मानिए, बच्चे इस तरह की गतिविधियों से सिर्फ नहीं कुछ बनाना सीखते हैं बल्कि चीजों की कद्र करना भी सीखते हैं। चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं हमारा अगला गाना, जो कि मोनिरुद्दीन दा ने रिक्वेस्ट किया था, तेरी ओर।

0: तो चलिए इस बात पे बढ़ते हैं आगे, ले लेते हैं एक और कॉल। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉनस्टॉप गपशप में।
1: मैं जीतू बात कर रहा हूँ रिसरा से।
0: जी जीतू जी, कैसे हैं, सब ठीक ठाक?
1: बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ है।

0: थैंक यू सो मच।
1: और मौसम भी आज मस्त है एकदम, बारिश तो हो नहीं रहा है लेकिन ये जो मौसम बना हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: और जो प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है,
0: थैंक यू सो मच।
1: प्रोग्राम न्यू गाने से और लास्ट में जो आपका ये जो गाना बजा रंगीला रे बहुत अच्छा लगा, मतलब हमें तो अच्छा लगी लगा ही, नया गाना बजा तब भी अच्छा लगा और पुराने बच्चे तभी हमको अच्छा लगता है।

0: तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मेरे घर में जो है कॉपी ज़्यादातर हम लोग घर में जो मेरे भाई बहन जो है पढ़ते लिखते हैं, तो कॉपी जो भर जाते हैं
1: जी,
0: तो उसका तो रद्दी वाले से हम लोग बेच देते हैं, लेकिन उसका जो कवर होता है मोटा कवर तो बेकार चला जाता है, वो भी लोग लेता नहीं है, तो लोग वापस दे देता है मोटा कवर जो है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं अपना जो फोटो फ्रेम होता है, फोटो मतलब ऐसे सिंपल प्लेन फोटो निकलवा कर मैं उसे मतलब उसको चिपका कर उसको फ्रेम बना देता हूँ, फ्रेम बना कर उसको घर में मतलब लगा देता हूँ
1: जी।
0: तो मतलब एक तरह से वो बेकार नहीं हुआ, मतलब अच्छी मतलब कवर ऐसा रहता है कि मतलब जैसे कि बारिश में भी फटेगा नहीं, तो हम ऐसा बना देते हैं मतलब कवर से फोटो को।
1: ओके ओके ओके, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। हाँ जी बोलिए।
0: थोड़ी साइज बोलना चाहूँगा।
1: जी बोलिए, बिल्कुल इरशाद इरशाद।
0: मिट्टी के घड़े जब टूटते हैं, मिट्टी के घड़े जब टूटते हैं तो गमले बन जाते हैं, पुरानी चीजों से अक्सर नए रास्ते निकल आते हैं, फेंकने के बजाय उन्हें एक बार फिर से सहेज कर तो देखो, फेंकने के बजाय उन्हें एक बार फिर से सहेज कर तो देखो, बेकार पड़ी वो चीजें ही जिंदगी की नई रौनक बन जाते हैं।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल आज की आज
0: सुन रहे थे तो सच्चा है कि चलिए आज मैं पूरी शायरी में लिखता हूँ और सुना देता हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जीतू, और कि आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया, मेरा काम थोड़ा सा काम कम भी कर दिया आपने। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तो मैं गाना सुनना चाहूंगा फिल्म का नाम मोहरा, और गाने के बोले चीज बढ़िया मस्त मस्त।
1: चलिए चलिए ठीक है, बिल्कुल मस्त सा गाना सुना ही देते हैं आपको इस मस्त से मौसम में। ओके बाय।
0: ओके थैंक यू,
1: फिर मिलते हैं।
0: ओके
1: तो ये थे जीतू जी रिश्वा से, और सुनना चाहते हैं मोहरा फिल्म से तुम चीज बड़ी है मस्त मस्त, बिल्कुल सुनाएंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे आज के दिन।
2: आज के दिन
1: दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए तो, घने जंगल, पेड़ों की सरसराहट, दूर कहीं मोर की पुकार, हाथियों की चिघाड़ और जंगल का बेताज बादशाह बाघ। जरा सोचिए अगर ये सब हमारी दुनिया से गायब हो जाए तो प्रकृति कितनी अधूरी लगने लगेगी। आज के इतिहास में 7 जुलाई की तारीख हमें इसी बात को याद दिलाती है। साल 1955 में आज ही के दिन भारत में पहली बार वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य था लोगों को ये समझाना कि जंगल और उनमें रहने वाले जीव जंतु सिर्फ प्रकृति की शोभा नहीं बल्कि हमारे जीवन का अहम हिस्सा भी है। और उस दौर में अंधाधुंध शिकार, जंगलों की कटाई के कारण कई वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही थी। ऐसे में ये महसूस किया गया कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं। यही से शुरू हुई वन्य जीवों की संरक्षण की सोच। बाद के वर्षों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1952 लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाओं ने देश के बाघों और अन्य दुर्लभ वन्य जीवों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां जैव विविधता बेहद समृद्ध है। तो आइए इस ऐतिहासिक दिन पर हम भी एक छोटा सा संकल्प लें कि प्रकृति से प्यार करेंगे, जंगलों की रक्षा करेंगे और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि जंगल बचेंगे तो जीव बचेगा, और वन्य जीव मुस्कुराएंगे तभी हमारी धरती भी मुस्कुराएगी, है ना? फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हुए सुन लेते हैं मोहरा फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। उसके बाद बैक टू बैक दूसरा गाना महमूद राघव चैतन्य और रुआ कवि के आवाज में कॉकटेल 2 से माशूका।

तो दोस्तों, क्रिकेट में कुछ नाम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनते, वो एक एहसास भी बन जाता है। ऐसा ही एक नाम है महेंद्र सिंह धोनी का। 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में जन्मे आज ही के दिन महेंद्र सिंह धोनी ने शायद बचपन में ही नहीं सोचा होगा कि एक दिन पूरा देश उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानेगा। धोनी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक साधारण परिवार का लड़का जिसने रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी भी की, लेकिन दिल में क्रिकेट का सपना कभी मरने नहीं दिया। धोनी सिर्फ एक शानदार विकेट कीपर या विस्फोटक बल्लेबाज ही नहीं रहे, बल्कि भारत के सबसे सफल कप्तानों में भी गिने जाते हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 की T20 विश्व कप, 2011 का वनडे विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। दुनिया के इकलौते कप्तान जिन्होंने ICC की 3 बड़ी वाइड बॉल ट्रॉफियां जीती हैं। मैदान पर चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, धोनी के चेहरे पर वो सुकून, वो मुस्कान, शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि बेहतरीन लीडर भी मानते हैं। उनका मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट और मैच के आखिरी ओवर तक ले जाकर जीतने का अंदाज आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है। तो 7 जुलाई सिर्फ एक महान क्रिकेटर का जन्मदिन नहीं बल्कि उस शख्सियत का जश्न है जिसने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे हो, अगर दिमाग शांत और इरादे मजबूत हो तो जीत आपके कदम जरूर चूमती है। तो महेंद्र सिंह धोनी को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो गया है अब 10:56, जाने का वक्त ऑलमोस्ट हो चुका है। बातें खत्म ना हो लेकिन जाना बिल्कुल मैंडेटरी है, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब सीधे दूसरे स्टूडियो में मिलूंगी मैं। जी हाँ, FM गोल्ड पर लेकर लो आगे उनकी याद। और आज बात करेंगे एक्ट्रेस नरगिस के बारे में। चलिए बातें करेंगे, ढेर सारी गाने भी सुनेंगे साथ ही साथ। फिलहाल के लिए 107 FM रेनबो पर यही समाप्त करती हूँ आज नॉन स्टॉप गपशप का सिलसिला। आज के दिन जो जो घटनाएं घटी हमने आपको बताया, और होपफुली आपको प्रोग्राम अच्छा भी लगा होगा। बताइएगा जरूर कैसा लगा। फिलहाल 107 FM रेनबो से लेती हूँ विदा, मिलूंगी ठीक 100.1 FM गोल पर। सीधे जाते जाते नीरज श्रीधर की आवाज़ में भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: डर लगा? कहाँ जाओगे तुम?
1: चंद्रापुरी जाना, रास्ता छूट गया।
0: आओ मेरे साथ, आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ।
1: किंतु नदीर भीतर दिए की करे जाबो?
0: फिकर मत करो, आओ, चले आओ बेटा। हाँ, आ गया। ये है चंद्रापुरी जाने का रास्ता। क्या ठीक है ना? अच्छा, अब मैं जाती हूँ।
1: चले जाबे? कोठे जाबे तुम्हें? तुम्हारा घर कहाँ?
0: मेरा घर?
1: हाँ।
0: यहाँ से बहुत दूर। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं चलती हूँ।
1: किंतु किंतु ओडी के कोठे जाबे तुम्हें?
2: सुनो सुनो।
3: अन्नम तु धान्य संभूतम्

0: சுந்தரம் மதுரம் சத்யம் சிவம் சுந்தரம் மதுரம்.
1: अरे तुम क्या समझा, परदेसी नहीं असली चीज दिखाओ, शो मी ओरिजिनल, देखो दाम ठीक लेगा और चीज भी अच्छा देगा। हाँ अरे नहीं नहीं वो नहीं चलेगी, दूसरा दिखाओ।
2: ये दुकान चामर गुलो भारी सुंदर गोपाल दा, एक नीले मन है ना कि बोलो
3: ওখানে যাবে কেমন করে, হিন্দুস্তানি মেয়েটা একাই যে 100 হয়ে

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: तीन बजकर 3 मिनट और 5 सेकंड्स और 3 का तड़का लगाने आ गई है आज चैनिका। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रोज वाला मैटिनी शो, जिसे हम कहते हैं, ये मसालेदार नाम जो है इसको हमने दिया है, हम कहते हैं 3 का तड़का। ये तड़का शब्द सुनते ही मुंह में जैसे पानी आ जाता है। नहीं, वैसे ये आपको एक मजे की बात बताऊं कि आज एक बड़ा खास दिन है, और ये जो दिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है वो एक ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है जिसका नाम सुनते भी मुंह में पानी आता है, और वो चीज है चॉकलेट। आज है वर्ल्ड चॉकलेट डे, और आप सोच रहे होंगे कि इस मौके पर मैं आपको क्या यहाँ पर बैठकर अभी फिलहाल मेरे माइक्रोफोन के जरिए आप तक चॉकलेट पहुंचाने वाली हूं क्या? तो ये तो खैर, अब ये जो अभी का जो फिलहाल जो मंजर है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, ये संभव नहीं है। हो सकता है कि आज से कुछ साल बाद ये संभव हो जाए कि आप वहाँ से छाप लें, मैं यहाँ से भेजूँ, आप वहाँ से प्रिंट कर लें और खा लें चॉकलेट, लेकिन उसके लिए तो फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं अच्छे गाने ज़रूर सुनवाऊंगी, ये वादा है मेरा। तो बने रहिए मेरे साथ, ओनली ऑन FM 107। कार्यक्रम शुरू हो चुका है 3 का तड़का, सिनेमा की बातें करेंगे।

ऋतिक रोशन यानी वॉर के कबीर का एक छोटा सा कैमियो है ऐसा सुनने में आ रहा है फिल्म अल्फा में, लेकिन इसके बावजूद अल्फा की जो किस्मत है ये न जाने उसे कहाँ लेकर जाए। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा का अल्फा प्रदर्शन फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। मंडे जो टेस्ट होता है फिल्मों का, क्योंकि फ्राइडे या कभी कभी थर्सडे फिल्में रिलीज़ होती हैं, उसके बाद फिर वीकेंड पे अच्छा बिजनेस करती है, फिर उनके लिए वो एसिड टेस्ट होता है मंडे को, जब पता चलता है कि फिल्म एक्चुअली अच्छा बिजनेस करेगी, लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं। तो मंडे टेस्ट में क्रैश हो गई है अल्फा, अगर आप कलेक्शंस की बात अगर माने। चौथे दिन गिरा है कलेक्शन और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये फिल्म हिट साबित ना हो पाए। वैसे इतने उतार चढ़ाव होते हैं किसी भी फिल्म के ग्राफ में अगर आप देखें कि लोग, हो सकता है कि कभी कभी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा लोग देखने पहुँचे, या फिर उसके विपरीत उल्टा ही हो जाए, लोगों की बातें सुनकर लोग ना जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस फिल्म के लिए, अल्फा के लिए ये अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। वैसे बहुत यूनिक सा आइडिया था, हाँ, स्पाई यूनिवर्स में पहली दफ़ा आप फीमेल स्पाई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। शर्वरी वाघ भी एकदम उम्दा एक्ट्रेस, आलिया भट्ट तो खैर उनका तो जवाब ही नहीं है। तो बहुत चर्चा में थी ये फिल्म और वीकेंड में अच्छा बिजनेस किया, बहुत सॉलिड कलेक्शन रहा, और चौथे दिन से अब कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो हो गया है इसका जो कलेक्शन है। और वीकेंड में जो लेटेस्ट जो खबरें हैं उनके अनुसार 34 करोड़ तक इसका कलेक्शन, फिल्म का कलेक्शन पहुंच गया था। और उसके बाद मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे को, केवल मंडे को 3.85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, यानी एक गिरावट आई है वीकेंड के मुकाबले मंडे के कलेक्शंस में। अब देखना ये है कि हिट होती है ये फिल्म या नहीं, क्योंकि बजट जो है फिल्म का ऐसा कहा जा रहा है कि 100 करोड़ से 125 करोड़ के बीच का बजट है, इतनी लागत में ये फिल्म बनी है, तो बहुत बड़ी कमाई की ज़रूरत है पहले हफ्ते में इस फिल्म के लिए। देखते हैं वर्ड ऑफ माउथ अल्फा का साथ देगा या नहीं देगा। ऋतिक रोशन का जो कैमियो है वो इस फिल्म के लिए क्या लगी साबित होगा, सोचिए आप सोचिए। फिलहाल तो आपको अगला गीत मैं सुनवाऊं, तीन का तड़का सुन रहे हैं आप, बने रहे मेरे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर। परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
1: परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बालिकाओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना की। यह एक तकनीकी डिग्री है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से आने वाली बेटियों के लिए AICTE की यह एक बड़ी पहल है। इससे छात्राओं की तकनीकी पढ़ाई में आर्थिक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय की पहल से बालिकाओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रम के पहले या दूसरे वर्ष में प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए AICTE MOE द्वारा चलाई जा रही एक स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति योजना है। प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाएं लाभ उठाने की पात्र हैं। लाभ प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली

0: छात्राओं के लिए अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए और पार्श्व प्रवेश के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह योजना युवा महिलाओं को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर देने और ज्ञान कौशल और आत्मविश्वास के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर एक सफल भविष्य के लिए तैयार करने का एक अभिनव प्रयास है। 50,000 रुपये प्रतिवर्ष अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए अर्थात प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अधिकतम 4 वर्ष और द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्रों के लिए अधिकतम 3 वर्ष पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से एक मुश्त राशि के रूप में कॉलेज शुल्क, कंप्यूटर, स्टेशनरी, किताबें, उपकरण, सॉफ्टवेयर की खरीद आदि के लिए प्रदान की जाती है। माता पिता की मिली जुली वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण राष्ट्रीय छात्र वृत्ति पोर्टल द्वारा किया जा सकता है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी साधन है और इसी उद्देश्य से प्रगति छात्र वृत्ति योजना शुरू की गई है ताकि लड़कियां तकनीकी शिक्षा हासिल कर सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

वेलकम टू द जंगल ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया और फिल्म ने महज 10 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। और इस बीच कुछ ऐसी अफवाहें उठ रही थी कि इस फिल्म को बनाने में 250-300 करोड़ रुपए लग गए। तो जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, कोरियोग्राफर टर्न्ड डायरेक्टर अहमद खान, उन्होंने बताया है कि ये जो अटकलें लगाई जा रही थी एकदम भी बिल्कुल भी सही नहीं है और केवल मात्र 110 करोड़ में उन्होंने ये फिल्म पूरी कर दी थी। और हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टार कास्ट है इस फिल्म का। तो उन्होंने इसे कहा कि एक तो लागत जो है फिल्म को बनाने में वो बहुत कम आई, ज़रूरी नहीं कि अगर बहुत सारे स्टार्स एक साथ एक फिल्म में हो तो फिल्म का खर्चा भी बढ़ जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रिंट्स और एडवर्टाइजिंग जोड़ने के बाद फिल्म की कुल लागत करीब 125 करोड़ के आसपास ही रही थी और शूटिंग एक्चुअली बहुत कम दिनों में उन्होंने ये पूरी कर ली। केवल 75 दिनों में ही, यानी 75 डेज में ये शूटिंग पूरी हो गई थी। उनका ये कहना है कि शूटिंग के अगर दिन बढ़ते तो फिल्म को बनाने का खर्चा भी बढ़ता। एक एक दिन ऐसा हुआ कि सेट पर 900 लोग तक मौजूद रहते थे और इनमें कलाकारों की टीम, उनका स्टाफ, सब लोग शामिल होते थे। और इतना ही नहीं, कभी कभी 50-50 वैनिटी वैन्स एक साथ खड़ी रहती थी। लेकिन इसके बावजूद बजट तो कंट्रोल में ही रहा उनके और समय से फिल्म पूरी भी हो गई। और उन्होंने कहा कि 36 साल फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बिताए तो फिर इसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। किस तरह से बजट कटल करना है ये तो उन्होंने इतने सालों में सीखा ही है। और इस फिल्म को बनाने में, क्योंकि किसी भी तरह के VFX का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है, तो इसी वजह से बजट जो था वो नियंत्रण में ही रहा, आसमान को नहीं छुआ। और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि रिलीज़ होने से पहले ही पूरी फिल्म की जो लागत है ना वो निकल आई, क्योंकि वहाँ पर सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स थे, म्यूज़िक राइट्स थे, तो पूरा जो बजट है वो पहले ही इनका रिकवर हो गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, आजकल ऐसी फिल्में कम बनती हैं, ऐसी फिल्में वाकई में कम बनती जो अपने रिलीज़ के पहले ही अपना सारा का सारा जो पैसा है वो वसूल कर ले। तो वेलकम टू द जंगल ने ऐसा ही कमाल कर दिखाया। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो देख सकते हैं, लगी हुई है अभी भी सिनेमाघरों में। उधर एक और फिल्म की बात मैं जरूर करना चाहूंगी जो अल्फा और वेलकम टू द जंगल के साथ एकदम टक्कर दे रही है। ये फिल्म है मैं वापस आऊंगा। चौथे वीकेंड में भी दिखाया इसने बहुत अच्छा दमदार परफॉर्मेंस इसकी अब भी चल रही है, क्योंकि शोज जो है इस फिल्म के घट गए लेकिन कमाई जो है वो डबल हो गई है। तो एक वर्ड ऑफ माउथ का भी यहाँ पर रोल ज़रूर ज़रूर है। और फिल्म के गाने, हाय हाय हाय हाय, क्या क्या ही गाने। मस्कारा तो पॉपुलर हो रहा था लेकिन उसके बाद वो जो गाना है मैं पास हूँ, बाप रे बाप, वो गाना तेरे पास में, मतलब वो आप जितनी बार सुने वो गाना जो है वो और अधिक गहराई में आपके उतर जा रहा है। तेरे पास में, तेरे पास में, ना जाने कितने लोग इस गाने पर रील्स बना रहे हैं। और देखते देखते 3 का तड़का का जो समय है आज समाप्त होने वाला है। चलते चलते बिलेटेड बर्थडे विशेस रणवीर सिंह। और क्या आपको पता है कि आपके चहेते अभिनेता पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए जब विदेश में वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त वो छोटे मोटे बहुत सारे काम किया करते थे ताकि उनका जो खर्च है वो चल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ते हैं वो ऐसा ही करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करते हैं। और देश में लौटने के बाद उन्होंने कॉपी राइटिंग की थी बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग ग्रुप्स के लिए। उसके बाद वो आए फिल्मों में हीरो बनने, जो उनका असली सपना था, असली ख्वाब था। ख्वाब उनका पूरा हुआ और फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी फिल्मी दुनिया को मिला अपना धुरंधर। इसी बात पर आप सबसे लेती हूँ मैं विदा और आपको बताना चाहूँगी कि 3:30 पर आप सुन सकते हैं विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित एक विशेष कार्यक्रम। आप लोग बने रहें, सुनते रहें FM रेनबो कोलकाता पर। आपने ट्यून किया है, आपके साथ आज है चैनिका। सुन रहे थे आप 3 का तड़का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
1: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी, लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा

0: होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
1: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
1: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
1: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
1: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
1: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
1: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं। इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियां द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े

0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे।
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नहीं कभी घबराती चींटी।
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती।
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की।
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी,

0: तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
0: हो सकता है कि...
2: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
0: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
2: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
0: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
0: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
3: आओ चलो आओ।

0: और सुनो कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो, नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं।

0: कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
1: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
0: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
1: जलेबी? वैसी जैसे हमारे देश में मिलती है?
0: हाँ, बिल्कुल वैसी।
2: कमाल है
0: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
2: वाह।

0: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
1: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें मम्मी कहते हैं। मम्मी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: हो, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ। कादिर आओ, आओ।

0: कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही, तो बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।
1: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
0: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
0: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
1: पूछिए।
0: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
1: हर साल पानी चढ़ता है।
0: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
0: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
0: हार गए?
1: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
0: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
0: देखिए, नील नदी में 2 नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछ कर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ है?
0: अभी आ रहे हैं। स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो,

0: सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते। लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

भरे नगमे। कितना अच्छा होता है एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना और उस संगीत को सुनना जो धमनियों में बहता है, उन रंगों में नहा जाना जो बहुत गहरे चढ़ते उतरते हैं। शब्दों की खोज शुरू होते ही हम एक दूसरे को खोने लगते हैं और उनकी पकड़ में आते ही एक दूसरे के हाथों से मछली की तरह फिसल जाते हैं। हर जानकारी में बहुत गहरी ऊब का एक पतला धागा छिपा होता है। कुछ भी ठीक से जान लेना खुद से दुश्मनी ठान लेना है। कितना अच्छा होता है एक दूसरे के पास बैठ खुद को टटोलना और अपने ही भीतर दूसरे को पा लेना। प्यार भरे नगमे लेकर आ जाई है चैनिका और ये खूबसूरत सी कविता रची थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। और आज के इस कार्यक्रम में इसी तरह प्रेम में पगी हुई कुछ यूं ही सुरीली पंक्तियां आपको मैं सुनवाऊंगी हिंदी फिल्मी गीतों के माध्यम से। आप जुड़े हैं एफएम रेनबो कोलकाता पर छायालोक प्यार भरे नगमे। हर मंगलवार की शाम हम लेकर आते हैं शाम 7 बजे और चैनिका के साथ आप लोग जुड़े रहिए। 8 बजे तक रहूंगी मैं आपके साथ और फिलहाल घड़ी में समय है 7:11:04। चलिए रुख करते हैं आज के अगले गीत की तरफ। पहला गीत जो मैंने सुनवाया वो था फिल्म रंग दे बसंती से। याद होगी आपको ये कमाल की फिल्म और ये पहला गाना इसलिए मैंने चुना आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि आज है फिल्म के निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा का जन्मदिन। इस मौके पर उनको हमने इस म्यूजिकल अंदाज में जन्मदिन विश किया। और चलिए अब एक और खूबसूरत सा गीत सुना जाए परिंदा फिल्म से आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज में। आप सबके लिए ये वाला गाना संगीतकार हम सबके बेहद प्रिय राहुल देव बर्मन और गीत को लिखा था खुर्शीद हलौरी ने। सुनते रहें साथ रहें एफएम रेनबो कोलकाता पर प्यार भरे नगमे लेकर हाजिर है चैनिका का।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक प्यार भरे नगमे।
1: कवित्री बाबूशा कोहली लिखती हैं कि प्रिया, तुम पर प्रेम के हजार कोड़े बरसें, तुम्हारी पीठ पर एक नीला निशान तक न मिले। सच, प्रेम के जो कोड़े हम पर बार बार हजार बार बरसते हैं, उनके कोई निशान दिखाई नहीं देते, लेकिन निशान तो पड़ते हैं। निशान पड़ते हैं हमारे दिल और दिमाग पर, निशान पड़ते हैं हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी जो ये जो संपूर्ण ये जो हमारी ये जो जिंदगी है या हमारा जो अस्तित्व है, उस पर प्रेम के निशान पड़ते हैं। और ये निशान जो छोड़ता है प्रेम, या तो हमें लेकर जाता है अपने गंतव्य की ओर एकदम मेहनत से, कर्मरत होकर हम अपने दिल में उत्साह लिए आगे बढ़ते हैं, या फिर कभी कभी ये निशान हमें राह भी भटका सकते हैं। हो सकती है कि हमारी आंखें धुंधला जाएं, हमें कुछ भी साफ नजर ना आए, गम का बादल आंखों के सामने छा जाए। तो

दोनों तरह की परिस्थितियों में ही, लेकिन प्रेम जो है वो स्वीकार्य है। प्रेम को हमने कभी मना नहीं किया, प्यार से हमने कभी आंखें नहीं फेरी। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में प्यार बना रहे। आप मानते हैं इस बात को? अगर मानते हैं तो ये वाला जो गाना मैं अभी आपको सुनवाऊंगी, इससे आप सच में रिलेट कर पाएंगे। रॉकी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, आइए सुनते हैं। संगीतकार एक दफा फिर से राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने ये गीत लिखा था। सुनते रहें, साथ रहें प्यार भरे नगमे, चैनिका के साथ ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता।

याद है सर्दियों की सुबह जब धुंध से आंख मिलाकर तुमसे मिलने आया करता था मैं, और तुम उनींदी आंखों से मेट्रो की सीढ़ियों पर बाट जोहा करती थी मेरी, अपनी ठंडे हाथ तुम्हारी गर्म हथेलियों में रखकर दोहराता था केदारनाथ सिंह की कविता। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। तुम लजाकर झटक देती थी मेरा हाथ और मेरे चश्मे के दोनों लेंस पर कन्नी उंगली से लिख देती थी अपने नाम के दो अक्षर। तुम्हें शिकायत रहती थी कि मेरे चश्मे का फ्रेम छोटा है बहुत और उसके लेंस पर नहीं आता हम दोनों का नाम, और इतना कहकर किसी पौधे की तरह झुक जाता था तुम्हारा सिर मेरे बाएं कंधे पर। एक रोज जब टूट गई थी मेरी कोल्हापुरी, तब उतार दी थी तुमने भी अपनी चप्पल और उड़ने लगी थी मेरे साथ हरी दूब पर। उस रोज आखिरी बार घास इतनी अधिक सब्ज हुई थी और तुम इतनी अधिक गुलाबी। उस रोज आखिरी बार दिल्ली में इंद्रधनुष अपनी पूरी रंगत में निकला था और आखिरी बार मैंने बादलों पर घोड़े दौड़ाए थे। तुम्हारी यादों की नदी में मैं रोज डूबता हूँ और रोज तलाशता हूँ किनारा। मेरे चश्मे का फ्रेम अब

पड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारी उंगलियाँ इतनी दूर की मेरी दूर की नज़र को भी वे नज़र नहीं आती। कोल्हापुरी अब टूटती नहीं है और धुंध के साथ चलना सीख लिया है मैंने। बस हाथ ठंडे रहते हैं और बायां कांधा बहुत दुखता है सर्दियों में। अंजुम शर्मा की रचना है ये, और क्या ही इत्तेफाक कि यहाँ केदारनाथ सिंह का जिक्र है और आज है उनकी जयंती। उनकी जो कविता, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, इसका जिक्र है इस कविता में। और सच में अपने प्रियतम का जो हाथ है वो जब आप पकड़ें तो लगता है कि शायद दुनिया में इससे ज़्यादा सेफ जगह है, इससे ज़्यादा मुलायम स्पर्श और कोई हो ही नहीं सकता। और ये जो गर्माहट है, उष्णता है प्रेम की, ये हम ढूंढते हैं या फिर चाहते हैं कि दुनिया में भी हो, लेकिन कहाँ ऐसा हो पाता है। ऐसी खास जगहें जीवन में विरल ही होती हैं और रहनी चाहिए। खास जगहें खास लोगों के पास ही होती हैं जहां पर हम आश्रय लेते हैं, और ये प्रेम का आश्रय सबके जीवन में बहुत जरूरी है। प्यार भरे नगमे लेकर चैनिक आई है FM रेनबो कोलकाता पर, और अभी फिलहाल घड़ी में समय 7:36 और कार्यक्रम यूं ही आगे बढ़ता रहे खूबसूरत प्यार वाले हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। अभी जो अगला गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाज में ये गीत है, फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना, और संगीतकार इस खूबसूरत गीत के शंकर हसन लॉय हैं। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने। चलिए सुनते हैं, आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ, ओनली ऑन छायालोक, प्यार भरे नगमे।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

प्यार जो है ये आखिर होता क्या है? दिमागी खलल, हॉर्मोन्स में फेर बदलाव कम ज़्यादा, या फिर बस यूं ही किसी की तरफ ऐसे बिना किसी वजह के आपका अट्रैक्शन? एक्चुअली कोई भी एक फिक्स्ड परिभाषा नहीं है प्यार की। हम सब जानते हैं अलग अलग किस्म का होता है प्यार, अलग अलग लेवल पर लोग प्यार करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से होते हैं ये जो मीठे रिश्ते हम बनाते हैं, माँ के साथ उसके बच्चों का, प्रेमियों का आपस में प्यार, पति पत्नी का आपस में प्यार, भाई बहन का प्यार, और भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं इस दुनिया में जो प्यार को बड़ी खूबसूरती से बखान करते हैं। प्यार का परिचय इन रिश्तों में बखूबी मिलता है। जैसे अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जो चल रहा है, कितने लोगों के दिल टूट गए। CR7 जो है उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप था, उधर नेमर का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप हो गया क्योंकि दोनों ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, अब वो नहीं खेलेंगे। और जो भी रोनाल्डो के फैंस हैं, नेमर के फैंस हैं, बहुत प्यार करते हैं वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी से, अपने सितारे से, उन सबका दिल टूटा है। तो ये भी तो एक ऐसा प्यार है, ऐसा एक्सप्रेशन है जहाँ हम आइडलाइज करते हैं हमारे प्रिय व्यक्तित्वों को और उनकी तरफ इतना स्ट्रॉन्ग एक इमोशन हम महसूस करते हैं जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। जिस तरह अभी पिछले दिनों एक छोटे से बच्चे की बहुत दिनों की विश पूरी हो गई, वो अस्पताल में एक बड़ी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, 8 साल का बच्चा है, और वो चाह रहा था कि एक बार वो अरिजीत दादा से मिलेगा, अरिजीत सिंह को देखने की उसके मन में बड़ी मंशा। और ये बात किसी तरह से अरिजीत सिंह तक पहुंची और उन्होंने बिना किसी तरह के बाजे गाजे के, बिना किसी

आके चुपचाप जाकर उस बच्चे से मुलाकात की, उसकी हॉस्पिटल बेड के पास जाकर बैठे और उसके साथ बातें की। उस कमरे में खुशियां उन्होंने बिखेरी, बच्चे का मन जो है वो तरोताज़ा हो गया, बहुत खुश हुआ। उसकी जो विश थी ये पूरी की उसके पसंदीदा कलाकार अरिजीत सिंह।

अरिजीत सिंह ने जिस तरह से बच्चे के साथ कनेक्ट किया, ये भी तो प्यार ही है ना? तो ये जो प्यार है, ये हम इंसानों को डिफाइन करता है। हम अलग हैं क्योंकि हम जो महसूस करते हैं उसको हम एक्सप्रेस भी कर पाते हैं, हम कह पाते हैं हमारे उस प्रिय मनुष्य को, हमारे उस प्रिय साथी को, हमारे उस लव्ड वन को, कि हम उससे प्यार करते हैं। ये खास बात है हमारी मानवता की, हम इंसानों की। और ये बड़ा सा लेक्चर देने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ये चंद बातें आपसे बात करते करते जहन में आई, तो मुझे लगा कि जुड़ी हुई बात है, प्यार भरे नगमे हैं, प्यार भरी कविताएं हो गई साथ में। तो ये चंद बातें हम इंसानी रिश्तों की, जो हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, उन रिश्तों की बात हम क्यों ना करें। अलग अलग तरह के रिश्ते हैं हमारी जिंदगी के जो हमें घेरे हुए हैं, तो उनका जिक्र भी तो लाजमी ही था ना। और फुटबॉल फीवर जो अभी है, ऐसा बुखार आया है, फीवर ही है बिल्कुल। ये फीवर तब उतरेगा जब ये जो विश्व कप है ये कोई देश जीत कर ले जाएगा। तब तक ये बुखार उतरना नहीं, तब तक रत जगे होंगे, तब तक बस आप हर वक्त टेंशन में रहेंगे कि मेरी पसंदीदा टीम कहीं निकल ना जाए। तो ये भी तो प्यार ही है, अलग किस्म का प्यार है लेकिन प्यार है। तो यही है जादू प्यार का। फिलहाल इस गाने में भी कुमार शानू और अलका याग्निक इसी जादू की बात कर रहे हैं।

कोई भी ना जाने लेकिन सब लोग जाने। और ये जो जादू है ये हम सब के सर चढ़कर बोलता है, और यूं ही सर चढ़कर बोलता रहे, क्योंकि तभी तो ये जो दुनिया है ये खूबसूरत बनेगी, हमारे रहने लायक बनेगी। इसलिए प्यार में ज़रूर पड़ें, प्यार में ज़रूर उठें, प्यार ही प्यार हो आपकी ज़िंदगी में। इसी खूबसूरत भावना के साथ जानिका कहती टाटा बाय बाय, और चलते चलते आप सबके लिए एक बहुत खूबसूरत सा गाना यारा दिलदारा फिल्म से, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे प्यार भरे नगमे।

107 FM रेनबो पर आप सभी का स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रीति, लेकर आई है कार्यक्रम छाया लोग। कभी कभी सबसे अच्छी बातें होती है जिनकी कोई योजना नहीं होती, जैसे बरसात अचानक आ जाए, या फिर पुरानी किताब से सूखा गुलाब मिल जाए, या फिर रेडियो ऑन करते ही वही आवाज सुनाई दे जिसे सुनकर लगे आपको अरे आज तो सफर बहुत ही अच्छा कटेगा। तो आज का यह साथ भी कुछ ऐसा ही है, न कोई एजेंडा, न कोई भारी भरकम विषय, बस कुछ बातें जो शायद आपके मन में भी कभी आई होगी लेकिन भागती हुई जिंदगी ने उन्हें पूरा सोचने का मौका नहीं दिया होगा, है ना? तो फिर देर किस बात की, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 2213-1341। इस नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइशी गीत हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उन फरमाइश को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जब तक आप हमसे जुड़ते हैं, आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। एक बात बताएं, घर की सबसे बड़ी कीमती घड़ी वह नहीं होती जो दीवार पर टंगी होती है, बल्कि वह होती है जब पूरा परिवार बिना मोबाइल देखे 5 मिनट साथ बैठता है। सोचिए, पहले लोग कहते कि जरा बाहर घूम के आ जाओ ना, अब कहते हैं जरा मोबाइल से बाहर भी आ जाओ। समय बदल गया लेकिन एक चीज नहीं बदली, दिल को अब भी किसी अपने की हंसी सबसे अच्छी लगती है। अब देखते हैं कौन हंसते हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो
1: जी। हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं मोहम्मद नासिर, दरभंगा बिहार से मैम।
0: हाँ जी, बोलिए नासिर जी, कैसे हैं आप? वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी मैम, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है मैम। और यहाँ का मौसम अब कल से बारिश होना शुरू हो गया है।
0: अच्छा,
1: पिछले कई महीनों से या दिनों से बारिश एकदम नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। कल रोशन मैम से, मैडम रोशन सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं कोलकाता से बारिश भेज रहा हूँ आपके दरभंगा बिहार में, और उनसे बात
0: चलिए उनकी बारिश पहुँच गई आपके पास में।
1: थोड़ी देर के बाद यहाँ बारिश हो गया दरभंगा में, तो बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि खुदा ने, ऊपर वाले ने उनका जो है तो दुआ सुन लिया और यहाँ बारिश हो गए।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब आप बताइए आप कौन सा गीत सुनेंगे, अब क्या चाहेंगे अपने बिहार में?
1: जी मैं यही चाहूंगा कि इस भागदौड़ की जिंदगी में हर लोग एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे। तो ऐसे में मैम मैं यही चाहूंगा कि हमारे लिए और सबों के लिए गाना बजा दिया जाए फिल्म देश प्रेमी से।
0: Okay.
1: मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश।
0: बिल्कुल, तो चलिए आपकी फरमाइश पर हम सुनाते हैं देश प्रेमी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।
2: नफरत

वक्त चले 8:15 और 48 सेकेंड 107 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। चलिए इस गीत के बाद एक सवाल कर लिया जाए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई क्विज वगैरह नहीं।

नहीं भाई, और बहुत ही सिंपल है सवाल। ये मेरा है कि आखिरी बार आपने किसी पुराने दोस्त को बिना किसी काम के सिर्फ यह पूछने के लिए कब फोन किया था कि भाई कैसे हो? यकीन मानिए, कई बार ये दो शब्द किसी की पूरी पूरी शाम बदल देते हैं ना। शाम अभी बीती नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानिए। जब तक, बट हाँ, पहले मुझसे बात कर लीजिए, देखते हैं पहले कौन है हमारे साथ। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलिए।

हमें इनकी आवाज़ शायद आपको भी नहीं सुनाई दे रही। खैर कोई बात नहीं, मनूरुद्दीन लश्कर ने फ़ोन किया था और उन्होंने सुनना चाहा था कुछ कुछ होता है फिल्म से इस गीत को, तो उनकी फरमाइश पर सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में इस गीत को।

0: बिल्कुल, कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जो खत्म तो हो जाते हैं लेकिन उसकी गुनगुनाहट देर तक हमारे भीतर चलती रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग, वे हमारे साथ नहीं होते लेकिन उनकी कही हुई कोई छोटी सी बात बरसों तक हमारे भीतर मुस्कुराती रहती है। देखते कौन है हमारे साथ और उनकी कौन सी बात जो हमारे दिल में रह जाएगी। हेलो,
1: गुड इवनिंग दीदी,
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं
1: मेरी
0: आप?
1: तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी, बताइए कौन बोल
1: मैं
0: रहे हैं आप?
1: गौरीपुर पालपड़ा हावड़ा से संजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: हाँ संजीत जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: दीदी तो मैं मस्त हूँ, हस्त हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल खुश हूँ।
1: अब बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है,
0: बिल्कुल
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा जी, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: गीत सुनना चाहता हूँ शहर मूवी से, सुन सुन सुन बरसात की धुन।
0: ओके,
1: और दीदी एक गीत कुछ दोस्तों डेडिकेट कर सकता हूँ?
0: चलिए सिर्फ एक नाम जो बहुत आपका अजीज और बहुत प्यारा हो उनका नाम।
1: मेरा तो बहुत दोस्त है
0: सिर्फ
1: जिसका नाम
0: एक,
1: लूना लू,
0: सिर्फ
1: इसलिए
0: एक।
1: मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है,
1: जो सुन रहे हैं सभी श्रोता
0: को। ओके चलिए, संजीत की जी की फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म सर से सुन सुन बरसात की धुन। और इस गीत को सुनते सुनते आप भी बरसात की धुन सुनी लीजिए।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोक अपनी दोस्त प्रीति के साथ। वक्त हो चला है 8:33 और 7 सेकेंड। वैसे क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सबके घर में एक ऐसी कुर्सी जरूर होती है जिस पर कोई बैठता नहीं, लेकिन सबका सामान वहीं रखा रहता है। कभी इस्त्री किए हुए कपड़े, तो कभी बैग, तो कभी अखबार, और कभी अभी रख तो रहे यार, बाद में उठा लेंगे, ऐसी सोच। और वो बेचारा बाद में आज तक नहीं आया। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर चीज़ें बोल पाती तो घर की चाबियाँ सबसे पहले शिकायत करती है ना, हमें हर बार आखिरी समय पर ही क्यों ढूंढते हो। और चश्मा कहता, मैं तो हमेशा वही था, तुम्हारी ही नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, अक्सर खुशियाँ गायब नहीं होती, हमारी नज़रें उनसे हट जाती है। खुशियों को हमेशा तलाशते रहिए, आपके सामने ही है, तलाशने की भी ज़रूरत नहीं है, बस नज़र भर उठाकर देखने की ज़रूरत है। देखते हैं अब कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, चलिए इनसे तो बात नहीं हो पा रही है। खैर कोई बात नहीं, हम सुनते हैं इस गीत को।

0: चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हमें बिलाड़ा हवा खाना पुलिस के विश्वनाथ गायन बोल के दीदी।
0: हाँ विश्वनाथ जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: आज तक खेते खेते जाते का ना दीदी,
0: आवाज कट के आ रही, बट मुझे आपकी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, आप बोलिए।
1: हाँ बोलिए, हमें सुनते जाइए। इस मुहूर्ते नमो खलाल फिल्म थे के आज रात जाए तो हमें ने उठाइयो।
0: ओके, ये गीत आप सुन,
1: गांधी रिलीज हुए चिलो बोलती 1982।
0: ओके,
1: अंजनेय लेखा बाबूलाल किशोर।
0: ओके,
1: किशोर कुमार आशा भोसले दिए चल।
0: बिल्कुल, तो चलिए इन्होंने तो पूरी मानी इन्फॉर्मेशन दे दी, हम तक पहुंचा दी कि किशोर कुमार और आशा भोसले ने इस गीत में आवाज दी है नमक हलाल फिल्म से। तो चलिए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं इस गीत को।
2: अरे अरे अरे ना ना ना।

वक्त तो चला है 8:46 और 14 सेकेंड। आप सुन रहे हैं छाया लोक अपनी दोस्त प्रीति के साथ। कहते हैं कि कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ रास्ते यादों तक। आज जरा उसी रास्ते पर चलते है ना, जहाँ मोबाइल नहीं था लेकिन दोस्तों की कमी भी नहीं थी, जहाँ ऑनलाइन शब्द नहीं था लेकिन हर रिश्ता हमेशा कनेक्टेड रहता था। याद है जब घर की घंटी बजते ही बच्चे दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते थे और देखो कौन आया है। और आज डोरबेल बजती है, सबसे पहले मोबाइल पर कैमरा देखते हैं, अच्छा ये आए हैं, इस तरह का टूर निकलता है। समय बदला है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन अपनापन, उसे तो अब भी वही पुराने दरवाजे पसंद है। दरवाजे बड़े होने से घर बड़े नहीं होते, घर तो तब बड़ा लगता है जब उसमें दिलों की आवाजाही बनी रहती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलिए, सुप्रिया ने फोन किया था हावड़ा से और उन्होंने सुनना चाहे चालबाज फिल्म से मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में इस गीत को, तो उनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं इस गीत को।

वक्त तो चले हैं 8:54 और 43 सेकेंड। चलिए एक बात बताइए, जाते जाते मैं पूछते हुए जा रही हूँ, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें काम की चीज़ें रखी रहती है? जैसे कि उस डिब्बे में आखिर होता क्या है? 2 पुराने चार्जर, 3 बिना ढक्कन के पेन, 1 चाबी जिसका ताला किसी को याद नहीं, और 1 बटन जो शायद किसी ऐसे कपड़े का है जो बरसों पहले ही आपकी अलमारी से विदा हो चुका है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं रहने दो, कभी काम ही आ जाएगा। सच पूछिए, आशा का दूसरा नाम शायद यही है, कभी काम आ जाएगा। जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बरसों बात नहीं होती लेकिन यकीन होता है जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वही आएंगे। जी हाँ, ऐसे रिश्ते को बचा कर रखिए। रिश्ते शोर से नहीं, एहसास से चलते हैं। जो हर रोज याद ना आए वे भी दिल के बहुत बहुत पास होते हैं, है ना? इसी के साथ प्रीति आप सभी से कहती है टाटा बाय, फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए, साथ रहिए।